0: हेलो
1: हेलो
0: दादे दादे अगू इतना नामो ओ दांगी दादी दांगी दादी क्या उठा दादी
1: उठा